0: में नहीं तो आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई खो सकते हैं। अपने व्हाट्सएप अकाउंट और जाती मालूमात के तहफुज के लिए इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका व्हाट्सएप हमेशा एक फाल और आपके जरिए इस्तेमाल सिम से मुंसलिक हो। अपनी सिम की हैसियत बाकायदगी से चेक करें और नंबर तब्दील होने की सूरत में व्हाट्सएप पर अपना नया नंबर बर वक्त अपडेट करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
1: Instagram FM91.official.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है पेपाक
1: है तो ऐड टू कार्ड है
2: पेपाक है
1: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे
0: सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल FM 91 पाकिस्तान

0: For a commercial break, stay tuned to FM 91.
1: पेपर कार्ड है?
2: है तो फायदा है
3: पेपर है
1: तो ऐड टू कार्ड है
3: पेपर है
4: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे
5: टाइपिंग योर IELTS but still thinking with a pen?
6: What if you could take IELTS on computer and write your answers on paper? Listening and reading on computer, writing on paper, speaking with an examiner.
5: Same IELTS, same writing test. A new way to take your test.
6: IELTS on computer, writing on paper. Coming soon at AEO Pakistan.
5: For details, visit www.aeo.com.pk.
6: AEO Pakistan. Your IELTS, your way.
7: सुकून से घर बैठे मोबाइल ऐप से बच्चों की फीस और बिल्स वगैरह सब पे कर देता हूँ बड़ी आसानी है मीजान करंट अकाउंट से
8: मीजान करंट अकाउंट अब चेक बुक डेबिट कार्ड इशुएंस और पहले साल के लिए SMS अलर्ट्स मिले बगैर चार्जेस के और इसके साथ मिले बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज आज ही करंट अकाउंट खुलवाएं और आप भी मीजान करंट अकाउंट से फायदा उठाएं मीजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक
0: Subscribe to our YouTube channel, FM 91 Pakistan.

0: for a commercial break. Stay tuned to FM 91.
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है,
3: पेपाक है
1: तो ऐड टू कार्ड है,
3: पेपाक है
4: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे.
5: पेपाक आज ही अपने बैंक से बनवाए.
6: टाइपिंग योर आईएलट्स but still thinking with a pen?
7: What if you could take IELTS on computer and write your answers on paper? Listening and reading on computer, writing on paper, speaking with an examiner.
6: Same IELTS, same writing test. A new way to take your test.
7: IELTS on computer, writing on paper.